दुनिया की हर चीज खरीद सकते हैं। और तालीम बच्चों का बुनियादी हक है। अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाए। रेडियो अमन नेटवर्क 1 रंग।

0: होते हैं, जो कान जो है वो बाहर लगे हुए हैं बड़े बड़े, ठीक है, और जुबान जो है वो दांतों के बीच अलग अलग लोशनों ने बनाई है। तो देखें, दांतों के लिए जो सिपाही है वो दांत, जुबान के लिए जो सिपाही है वो दांत हैं। तो दांतों के लिहाज से मैं कहना चाह रहा हूं कि इतने बड़े जबड़े में, जबड़ों के दरमियान, दो जबड़ों के दरमियान अल्लाह जल्ल शानु ने एक नरम सी जुबान को पैदा फरमाया है, बना के रख दिया हमारे जिस्म में। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि वजह इस तरह क्या है, इसमें अकली दलील के लिहाज से, अकल के लिहाज से अगर सोचा जाए तो क्या है। ये वजह यह है कि देखिए, अगर जुबान को अगर हम ज्यादा इस्तेमाल करें, ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से कभी कभी ये जुबान दांतों के नीचे आ जाती है, ठीक है ना। तो अहादीस की रोशनी में भी उदागारा मिश्तों से रोजमर्रा रम दुनुशिया मिश्तों से चिकिम सराई ढेर रखी, ठीक है ना, ढेर जुताई खबरें कहीदा प्यार नीचा का माशरे शेर हर सराई जुल न खो सही लड़े लड़े खाल को नकेले ढेर जो जागेड़ी फजुल फजुल जागेड़ी ढेर जो जागेड़ी। वो इस्लाम मिश्ता सब ये जरूरत खबर आया कम खवा अक्सर तबलीगी मलगरी शेरा उसूल शरी उदा हदीस न चोड़ दिए बहन आई चेद जरूरत खबर आया कम खवा। इस मकसूद खबर लगा दो चिमिश्तों से आया पटोला उड़े जरूरत हर इंसान सर लगी रहा चाहे मिश्तों से जिंदगी तेरा उल लिहाज सरा जरूरत खबरें डेरे कई का जरूरत न मा सिवा लायानी चौतवी अरबी से आगा खबरें डेरे मिश्तों से न कीजिए पदों इन मिश्तों से टॉपिक यही वजुब याद करता हूं कि में खबर बेहतरीन है और कि में जबरदस्त खबरें और कि में आला तो ख्वाश खबरें चीज आगा जिक्र असकार थी चार कला इंसान चीजों तक कुछ आपूर्ति कीजिए बेगोरा तुस्त में पेरा हुए दीचे इंसान सरा नंदा जड़ चिदा आउ सर लागीदा आगा खबरें उ सर कई चार कला था कुछ आपूर्ति कीजिए बेदाई खबरें उ सर लग जाए बेहदा से कहा बेहदा से कहा बेहदा से कहा बेहदा से कहा बहरहाल मिश्ता हुए मशहूरों ने खबर कहूला चार कला तो कुछ ये रहे और तो सरा था जड़े खबरें कही वे चिदड़ता खुदाई रूपे जाना चिदाई चिकत स्कूटर पोस रहा होनी है मोटरसाइकिल पोस रहा होनी है बेदाई तो सरा दे अला दरियो दाई कहते मोटर चलावे लग गया बिच गुशा वे चिबिदाई तो ता अला दरियो दाई और चित तनाइए तनाऊजे तनाइए तो चित ननाऊजे बिचदाई तो ता अला दरियो दाई जिका इंसान की तनाइए तरफ तरह से शायतों नहीं मल करा शी बेचदा से शैतोन में आजोन लड़े कौड़े दो परसों का बेजिक्र असकार लग गया कि आगा जड़िया जिक्र असकार से ढेर ज्योत मिसाल के तौर पर इंसान सरा मिलेतार कई चिकीम जड़ीना चदी आगा दे जिक्र ना मानूस हुई और चिकीम दस जड़ीना भी चाहगा जिक्र सरल वड़ी मानूस हुई नहीं बेरिख्त दगा जिक्र चिदा उनको फीका फीका लगता है ठीक ना। बहरहाल दगे लिहाज सरा टॉपिक था तो दगो इंशाल मिश्तों से गुफ्त और शनीत कई चाहे नन मिश्तों से रेस दो दामे सरंग तेरा इनके दो आया डेरे डेरे खबरें पचार दी ओ का जिक्र असकार डेरे पचार दा आया मिश्तों से दा दी जिसम अंडाम चे दी दा सरंग इस्तेमाल इज लग गया दी ओ सरंग पकोर दी दगा लिहाज सरा पहला पहला कलर जा अटेंड खाऊं उम्मीद खुदा का चिदू दगा शुरू बदल नहीं लेकिन चलो कसी वे चेकता है कि जना असलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहु असलामुअलैकुम गजना का सुन माशाल्लाह दस दी चिबे काल रुको मेजा गे जी नादक लिहाज रजदाव यही चिबे टाइम मजा कहिए कल्चर कहिए बे लाजमी तो से काल ने मेजा गे जिया चलो जनाब मोहतरम हाफिज साहब वालेकुम सलाम वेचे टांक शेख और तार ना मास्टर फतीहुल्ला आवाज ओकिदा डेरा मान ना जजाकला खल जजद आई भी मिश्रा द्रोणी द्रो मलगरी दी मिश्रा मलगरतिया का इला गया दी फतीहुल्ला मास्टर से लेकिन तो सब ने ये रोन दोस्तों चिदिया चिकालू को बेजगुम सरा व्याल शी जना दस दी माशाल्लाह चे काल रुको ओ माशाल्लाह बरजा गिरी ना दगले हसर जम हजरात कहूँ काल मिश्ता भी मार खाइए असल वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहु रेडियो हो बंग का ललिया दा रेडियो बंग का बेदर सर रगेज हूँ असल वालेकुम
1: वालेकुम सलाम खबर सब सर
0: है लोई करम दा सेख ते किम जना जिस में
1: अगर वो खबर कहो डे रस्मिल खाना
0: माशाल्लाह डेरा इस्माइल खान ना मिश्तो सर मुश्तर तो से मुखातिब उस्ता उर्दू स्पीकिंग फास्ट में था का पश्तो स्पीकिंग में फास्ट था
1: ये रिश्ता ना है वहाँ पश्तीन
0: पश्ते से माशाल्लाह तुसी मेरे सारा खबर कहिए असल ना दे दिए खान तो जैसे मरा खल पश्तूनों को गली दी याद बानी नगर आ गली दी याद मिसाल दे टांक ना या टांक ना पोस उड़ना याद इधर मकीन तरफ ना तुसे किमें इलाके उस था वो इलाके उस था माशाल्लाह मस्जिद उधर में है
1: वजीर
0: उसका पोनिशो अक्सर मस्जिद में दी डेर
1: ना वजीर दी वहां पे वजीर है या शिकादुल खैसरा दा माकीन दा लका दे गादो शर्त तो इब्दा दे मस्जिद।

0: You are listening to Radio Ahmad Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: क्या आप चाहते हैं कि आपका कारोबार एक नए बुलंदियों तक पहुंचे? क्या आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत का हर लम्हा आपके लिए फायदेमंद साबित हो? तो देर किस बात की, हम आपको दे रहे हैं वो हल जो आपके कारोबार को देगा एक नई रफ्तार। हमारी खिदमत आपके कारोबार को नई मार्केट तक पहुंचाने में मददगार साबित होगी। आज ही हमसे राबता करें और अपने कारोबार को बढ़ाने का ख्वाब हकीकत में बदलें, क्योंकि कामयाबी के सफर में हम हैं आपके साथ। राबता नंबर 0345 93 32 580।

ओके जी खाल गोर शिविर सखा लिला रही छी सोकती अस्सलाम वालेकुम सॉरी माजरत सरा बिल्कुल तो से घंटे पूरा वाले तो से उजल ब्याट रही तक वाले छे पसे पर 927 291 292 दिल ला रही छी।